0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
6: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

Better, the radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन। सिर्फ
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी, वाइब भी।
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
9: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम एंड 72 ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. It's commercial time.
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
7: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
6: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
8: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। This is my only favorite station.
9: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back, back to back, hip hop, music.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats. Wow,
2: FM. Only Tune Super Hit Channel.
3: Fizz on 97.1 FM.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
11: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
2: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: पता ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़।
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शाम

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97।
2: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फदा 97.1 FM। अभी आप सुन रहे थे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे, और क्या खूबसूरत ट्रैक था। इस ट्रैक के बाद हमारी वापसी हो चुकी है और यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक है। इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार दोबारा से हमारी और आपकी मुलाकात होगी आवाज़ की दुनिया में। आज हम बहुत मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं जी। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के अंदर जो वेडिंग होती है, वेडिंग कल्चर, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मेहंदी होगी, बारात होगा, वलीमा होगी, और ख़ास तौर पर उन लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई, और जिनकी हो चुकी है डेफिनेटली वो भी एक दफ़ा रिमाइंडर ले लेंगे कि क्या ही कर दिया उन लोगों ने। तो जी, बहुत मजे मजे के ट्रैक होने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा अपनी।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर 97.1 FM। टाइम हुआ चाहता है 2:34 का, यानी कि 2:34 हो चुके हैं और हमें आपके पैगाम मिलने शुरू हो चुके हैं। अभी हमें जो पैगाम मिला है रुबाब की तरफ से, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के अंदर शमूलियत इख्तियार करके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और फरमाइश भी की गाने की। लेकिन जी, आगे चल के हम वो प्ले करेंगे रुबाब, डेफिनेटली थैंक यू आपका प्रोग्राम के अंदर शामिल होने का। और साथ कहती हैं जी, सुनने वाले तमाम जो लिसनर हैं उनको कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी शादी हो जाए पसंद की। रुबाब जी, उसके लिए तो आपको चाहिए कि आप कुछ मीठा मीठा जो है वो डिवाइड करें सबके अंदर, ताकि दुआ जो है कबूलियत की तभी निकलेगी दिल से जब अगलों के दिल को जो है वो राह मिलेगी। और राहत पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको हरकत करनी पड़ेगी। बहरहाल जी, थैंक यू एनीवे, आपने प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और हम आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे। और आज हम बात कर रहे थे जी कमर्शियल ब्रेक से पहले, जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर, यानी कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान पंजाब के अंदर, या चढ़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब हो जी, डेफिनेटली दोनों पंजाब जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट वेडिंग स्टाइल जो है वो सेम ही हैं। क्या बात है जी, वैसे वो शादियों की वहाँ पर सारों का इकट्ठा होना और ढोलकी और सारे फंक्शंस, सारों का टाइम निकालना और दूर दूर से शादी से बहुत बहुत दिन पहले आ जाना, ये पुराने ज़मानों में भी होता था और आजकल भी मेरे ख्याल से माइनर्स ही ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर ये होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रेंड ये चेंज हो चुके हैं। अब तो इवेंट जो है वो हॉल के अंदर ही होता है और वहाँ पर ही टाइम दे दिया जाता है कि भाई उस लोकेशन पे पहुंच जाइएगा, उस टाइम वहाँ पर इवेंट होगा, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाइएगा। पहले वो करता था कि भाई लोग इकट्ठे होते थे, मेल जोल इकट्ठा होता था और फिर बहुत बहुत दूर से लोग बहुत बहुत दिन पहले आ जाया करते थे। लेकिन आजकल भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और जो मैंने रिसेंटली इवेंट आपको बताया कि अटेंड किया पाकिस्तान पंजाब के अंदर जाके, वहाँ पर बहुत से लोग पहले गैदरिंग हुई उनकी, हमारे वो दूर के रिलेटिव थे और बहुत बहुत दूर से लोग जो है वो शादी से बहुत बहुत दिन पहले ही आ चुके थे। डेफिनेटली जी, इस टॉपिक के ऊपर हमारी बात चलती रहेगी और हम लोग जो है वो बहुत डिटेल के साथ आज आपको शादियों का बताएंगे। अगर आप लोग मिस कर रहे हैं पाकिस्तान की शादियां, पंजाब की शादियां या इंडिया की शादियां, पंजाब की शादियां, तो डेफिनेटली आज आपको मज़ा आने वाला है। इन सारी शादियों के हवाले से बहुत डिटेल के साथ आपको बताएंगे और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए डेफिनेटली आज हम दुआ भी करेंगे और उनको हिंट भी देंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि आप नहीं जानते होंगे या जो जानते होंगे उसको भी हम अपडेट कर देंगे। तो आगे चल के हम इस चीज के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी हमने जो है वो इश्क वे लगाया है, ये फरमाइश थी रुबाब की, रुबाब आपके लिए गाना प्ले हमने कर दिया। इस गाने की उस पार दोबारा से मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। रेडियो फजा 97.1 FM से लाइव आप राना अरसलान अली को सुन रहे हैं। आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे जी शादी के हवाले से। अभी इस ट्रैक से पहले हमारी बात हो रही थी वेडिंग के हवाले से, और वेडिंग के जो इवेंट्स हैं वो पंजाब के अंदर किस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। पहले जो है वो कुछ इवेंट इस तरह के होते थे जो आजकल नहीं है, और जो आजकल है पहले नहीं हुआ करते थे। ये कुछ अलग अलग सा माहौल जो है वो क्रिएट हो चुका है। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, लेकिन बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जो कि पहले से ही चलते आ रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली मंगनी जो है वो एक रस्म होती है हमारे पंजाब के अंदर। यानी कि फैमिली जो है वो ऑफिशियली एक रिलेशनशिप जो है उसको अनाउंस करती है, और उसके बाद रिंग जो है वो एक्सचेंज होती है। और ये भी एक बड़ा मज़े का एक जो है वो सेरेमनी होती है, बहुत मज़े का इवेंट होता है जिसके अंदर फैमिलीज जो है वो गेट टुगेदर करती हैं। यहाँ पर लिमिटेड फैमिलीज़ का जो सर्कल होता है, जो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार होते हैं एंगेजमेंट के अंदर, वो शामिल होते हैं, मंगनी के अंदर वो शामिल होते हैं। और फिर वहाँ पे आके रिंग का जो है वो एक्सचेंज करना, और फिर उसके बाद लड़का लड़की जो है फाइनली मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं वो कि उनकी शादी जो है वो अनकरीब होने वाली है। फिर उसके बाद जब भी जैसे ही जो है वो वेडिंग की डेट से डेफिनेटली अनाउंस होती है, तो उसके बाद फिर वो एक और रस्म जो है वो स्टार्ट होती है। वो बड़े मज़े की रस्म होती है फैमिली के अंदर, मोहल्लेदारों का आना और फिर सारों का इकट्ठे होकर वो ढोलकी रखना। ढोलकी रख के फिर वो टप्पे माइए, वो आप लोगों को नहीं पता तो मैं वो बताता चलूँ। टप्पे जो है बेसिकली पंजाब के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी ट्रेडिशनल वो एक टेस्ट होता है। और वो जो टप्पे हैं वो गाए जाते हैं ढोलकी के ऊपर, गाने गाए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर गीत जो है वो होते हैं, हंसी मजाक होता है, बड़े मज़े का वो जो एक इवेंट होता है। तकरीबन रात को सारे इकट्ठे बैठते हैं, जब सारे फ्री हो जाते हैं और ढोलकी रखी जाती है, फिर 2-3 घंटे 4 घंटे का ये जो है वो डेली बेस पे टाइम निकाल के बैठना और फिर बताना कि भाई यहाँ पर इस घर के अंदर शादी है। फिर जी ढोलकी पे ही सारी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद जो है वो आगे चल के माइयों वगैरह होता है। और माइयों के ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि माइयों के ऊपर जो है ना, और जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, उसको उपटन लगाया जाता है। ये पता नहीं उपटन होता है, ये हल्दी टाइप कुछ चीज़ होती है, ये लगाई जाती है। ये भी एक रस्म होती है कि जी माइयों बिठाता कुड़ी नूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली जो लड़की जब माइयों बैठ जाती है, तो ये ट्रेडिशन है कि उसके बाद लड़की जो है वो नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है, और उसके बाद वो ना तो धूप के सामने जाती है ना किसी और के सामने जाती है। उसने जो भी शॉपिंग करनी होती है शादी से रिलेटेड वो अपने मायों से पहले पहले कर ली जाती है। ये भी एक बड़ा मज़े का जो है ना ट्रेडिशनल जो है वो सीन है कि मायों से पहले पहले भाई अपने सारे काम कंप्लीट कर लो, मायों के बाद जो है वो आपने कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद जब शादी के ऊपर उसको देखा जाता है, उसके ऊपर नेचुरली एक हुसन की लेयर जो है उसकी स्किन के ऊपर आ चुकी होती है, और ये बड़ा मज़े का एक सीन होता है। फिर वो देसी लोग कहते हैं कि जी रूप चढ़ गया, बड़ा रूप चढ़िया सी। ये बेसिकली जो 4-5 दिन, महीना, 15 दिन या जितने भी दिन माइयों पहले रखा जाता है, उसके बाद जो वो एक उसको हसार में रखा जाता है कि जी भाई अब धूप भी नहीं लगेगी, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो अंदर रह के बंदे की वैसी स्किन जो है वो चेंज हो जाती है, स्किन टोन चेंज हो जाती है। फिर वो कहा जाता है ये देते बड़ा रूप चढ़ गया। वैसे तो ये चीज़ें अब कल्चर से हमारे ख़त्म होती जा रही हैं। ढोलकी जो है वो अब शादर नादर ही रखी जाती है, बहुत रेयर है ढोलकी रखना, और फिर उसके बाद मायूं वगैरह भी, ये रस्में अब कम होती जा रही हैं। लेकिन यस, जो लोग अभी भी पंजाब का कल्चर जो है अपनाए हुए हैं, वो डेफिनेटली ये चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, इसको साथ रखते हैं और आगे आगे डिलीवर करते जा रहे हैं। जो मैंने फंक्शन अटेंड किया, लास्ट इवेंट अटेंड किया, उसके अंदर ये जो है मायूं, ये भी रस्म हुई, उसके बाद ढोलकी की रस्म हुई, फिर मेहंदी की रस्म हुई। मेहंदी का जो रस्म है वो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, भाई एक ही तरतीब के साथ सारी चीज़ें बता दी तो मज़ा किरकिरा ना हो जाए। आपको आराम आराम से बताते हैं जल्दी कौन सी है, क्या ख्याल है। अभी आप सुने आप एक बहुत खूबसूरत ट्रैक, वेडिंग का जो ट्रैक है ये मंजर राही और फिज़ा अली जो है इसके अंदर ऑफिशियली परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। इस ट्रैक के उस पार दोबारा से मिलते हैं, और आपने बताना ये ट्रैक आपको कैसा लगा, और इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है इसके हवाले से भी आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।

अच्छा, जिस घर में भी शादी है ना, ये उस घर के लिए ट्रैक बड़ा जरूरी होता है, और ये ट्रैक जो है वो ऑफिशियली गाया जाता है, सुनाया जाता है। इवन के वेडिंग जो मूवी होती है उसके अंदर भी इस गाने को शामिल किया जाता है। तो जिन जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, और जिन लोगों की आज बर्थडे है जी उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज 24 अगस्त है, और आज के दिन जो जो लोग इस दुनिया में आए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनको भी डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

वेल जी, वेलकम बैक रेडियो फॉर द 97.1 एफएम पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आप फटाफट से मुझे ये बताइए कि आपको पसंद क्या है। बिरयानी पसंद है, चिकन कढ़ाई पसंद है, कोरमा पसंद है, मटन पसंद है, पुलाव पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद है? खीर पसंद है, मीठे में कस्टर्ड पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है? मुझे ये आप लिस्ट जो है वो बना के जल्दी से सेंड कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं बताने वाला हूँ आपको मीठे मीठे और नमकीन नमकीन, लजीज लजीज, तीखे तीखे सारे खानों का, जो कि हमारे यहाँ ये पंजाब के अंदर जी वो एक ट्रेडिशनल जो लवाजमात होते हैं, ये सारी लिस्ट होती है और बड़ी लंबी लिस्ट होती है। अगर मैं खानों के नाम लूँगा तो डेफिनेटली जिस तरह मेरे मुंह के अंदर पानी आ चुका है, आप भी बैठे बैठे आपका जी भी ललचाएगा, आपका दिल भी करेगा खाने पीने का, और आप उठेंगे, शायद उठ जाएं आप और फिर उठ के कढ़ाई बना लें। वैसे अगर आप आपकी शादी अगर नहीं हुई तो आप क्या पसंद करेंगे शादी के अंदर खाने के हवाले से, बिरयानी या पुलाव? मुझे बताइएगा। मुझे तो वैसे बिरयानी पसंद है, आप मुझे बताइए अपने बारे में कि आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है, और कोरमा और कढ़ाई के अंदर आप इन दोनों में से अगर कोई चीज़ एक चूज़ करनी पड़े तो वो कौन सी होगी? उसके अलावा हम अगर बात करें खीर और कस्टर्ड की, तो उसमें मुझे खीर पसंद है और ये शुरू से ही पसंद है, बचपन से पसंद है। तो डेफिनेटली शादी के अंदर भी अगर मैं चूज़ करूँ अपने खाने का तो मेन्यू, उसके अंदर मैं खीर को ही चूज़ करूँगा। उसके अलावा गुलाब जामुन और आइसक्रीम के अंदर अगर चूज़ करना पड़े तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें अच्छी हैं और दोनों चीज़ों को मैं चूज़ कर लूँ, क्योंकि गुलाब जामुन जो है उसकी तो अपनी ही एक मिठास है और अपनी एक स्पेस है, और आइसक्रीम जो है वो चल ही जाती है। उसके अलावा अगर चाय और कोल्ड ड्रिंक से आप लोगों को कुछ चूज़ करना पड़े तो आप लोग क्या चूज़ करेंगे? मैं तो डेफिनेटली चाय भाई, मुझे चाय शुरू से ही पसंद है। वरल जी, ये चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी हम मेहंदी के ऊपर ही थे, मेहंदी की बात हो रही थी और मेहंदी की जो बातें हैं, मेहंदी के अंदर जो रस्में होती हैं, मेहंदी की सबसे खास रस्म ये होती है कि जी दोस्त जो होते हैं वो मेहंदी निकालते हैं पंजाब के अंदर। ये देखें, दोस्तों का बड़ा जिगरा होता है भाई, अपने पैसे लगाना, फिर अपनी एफर्ट इन जो है वो पुट करना, फिर अपने काम से टाइम निकालना, सारा कुछ कर करा के आप जो है वो इवेंट अरेंज करते हैं मेहंदी का, किसका? अपने दोस्त की मेहंदी का। और दोस्त की मेहंदी होती है, दोस्त को फिक्र ही नहीं होती, और मेहंदी जो किसी और के घर से निकल के आ रही होती है, ये एक बड़ा मज़ेदार और दिल को छू लेने वाला जो है वो दोस्ती के हवाले से, एक दोस्ती की जो बाउंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से इवेंट होता है।

तो जी, अगर आपकी शादी जो है वो आने वाली है, तो आप लोग किस दोस्त को इस चीज के लिए इंतखाब करेंगे, किसका इंतखाब आप करेंगे कि जी कौन सा ऐसा दोस्त हो जो आकर आपकी मेहंदी की सेलिब्रेशन जो है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे और आपके साथ जो है वो आपका साथ दे, और कौन सा ऐसा शख्स होगा अगर आप सोचे बैठ के तो मुझे बताइएगा। मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे जहन में दो तीन आदमी आ रहे हैं, दो तीन मेरे दोस्त आ रहे हैं, और उनमें से पता नहीं अब कौन सा ऐसा दोस्त होगा जो सरप्राइज देगा। और ये भी होता है कि जी समटाइम एक जो है वो शख्स पहले अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई मैं मेहंदी निकालूंगा, लेकिन समटाइम ये होता है कि जी ऑन द स्पॉट जो है वो डिसीजन चेंज भी हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ दोस्त जो होते हैं, वो कहते हैं 80 ते पीछे नहीं रहना, 80 भी मेहंदी कटांगे।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर द 97.1 FM। तो फिर क्या ख्याल है, आपने कुछ चूज किया मेन्यू? मुझे बताइएगा कि आपने क्या चूज किया। जो हमने मेन्यू आगे डिसाइड किया था, हम जो डिस्कस कर रहे थे मेन्यू के हवाले से, कि जी खीर होगी या गुलाब जामुन होगा और कढ़ाई होगी या फिर कोरमा होगा और बिरयानी होगी या फिर पुलाव होगा, इन चीज़ों के अंदर जब मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है, ये भी एक बड़ा मज़े का जो है ना, वो मेन्यू का टाइम भी बड़ा मज़े का होता है। सारी फैमिली बैठती है और बैठ के डिसाइड करती है, सारे अपना अपना मेन्यू बताते हैं कि जी मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। और ये भी फैमिली के अंदर जब चूज़ किया जाता है, फिर फैमिली सारी इकट्ठी हो, फैमिली का सारे सारों का इकट्ठे होना और बैठ के फिर मेन्यू डिसाइड करना, फिर उसके बाद जब तारीफ़ होती है खाने की, तो फिर अगर खीर जिसको पसंद हो और खीर की तारीफ़ हो, तो फिर वो कहता है मी मैंने चूज़ किया था, ये मैंने चूज़ किया था। आप लोगों ने कभी इस तरह अपना मेन्यू डिसाइड किया और चूज किया और उसके बाद उसकी तारीफ हुई हो, वो भी आप बता सकते हैं हमें। बहरहाल जी, हम बात कर रहे थे बारात की, मेहंदी के बाद डेफिनेटली मेहंदी का जो इवेंट है उसके बाद बारी आती है बारात की, और बारात के अंदर जो है वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का जो है वो इवेंट होता है। बारात के अंदर सारों का रेडी होना और लड़की वालों के पास जाना लड़की को लेने के लिए, एक बड़ा मज़े का और बड़ा जो है वो ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है, उसमें जब सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद कुल्ला पहनाया जाता है, उसकी शॉपिंग। अच्छा, बारात से पहले जो लड़की की शॉपिंग है, ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है। लड़का जो है उससे तो उसकी पसंद पूछी ही नहीं जाती, भाई घर वाले पसंद कर रहे होते हैं ये कलर सूट करेगा, इसके ऊपर कुल्ला इस तरह का होना चाहिए, इसकी ड्रेस जो है वो कौन सी होनी चाहिए, इसको शेरवानी पहननी चाहिए या फिर इसको शलवार कमीज या फिर कुर्ता या फिर जो है वो ड्रेस जो है वो ये पहनेगा, और उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से देखा जाता है कौन सी चीज उसको सूट करेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मिल मिला के जब इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है और सारी चीज़ें जब इकट्ठी की जाती हैं, तो बड़ा मजे का हल्ला गुल्ला सा होता है घर के अंदर और सारे डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर फाइनली वो दिन आता है बारात का, जब बारात में वो चीज़ पहनी जाती है और फिर पहनने के बाद पता चलता है कि जी इसकी तो फिटिंग ही ठीक नहीं थी और ये तो फिक्स ही नहीं आ

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

वेल जी, बात हो रही थी दूल्हे के ड्रेस की, और लिटरली हमारा एक दोस्त था जिसकी मैं बात कर रहा था, उसने ड्रेस लिया और ड्रेस जो है वो उसको पसंद ही आया। फैमिली के कुछ इश्यूज की वजह से उसने ड्रेस तो ले लिया, डेफिनेटली घर वाले जो है वो पंजाब के अंदर, अच्छा हमारा कल्चर इतना मजे का है, हम लोग अदब में इतना आगे हैं, इतना आगे हैं कि हमें चीज़ ना पसंद भी हो और हमारे किसी बड़े को वो चीज़ पसंद आ जाए तो वो हम लोग चूज़ कर लेते हैं, बेशक हमें वो पसंद ना हो। ये होता है अदब, ये होता है एहतराम, और ये चीज़ जो है वो ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, अदब करना, एहतराम करना बड़ों का। और उस चीज़ की वजह से वो ड्रेस जो है उसने वो चूज़ तो कर लिया, लेकिन अब अंदर ही अंदर से उसको वो ड्रेस पसंद नहीं था। तो फिर क्या हुआ जी कि फिर उसने वो ट्राई नहीं किया, वो ट्राई ना करने की वजह से हुआ कुछ यूँ कि ड्रेस जब हमने पहनाया उसको, दूल्हे को जब तैयार किया, डेफिनेटली हम दोस्त जो थे वो मिलके उसको लेके गए, एक हमारे ही घर के पास एक सैलून था वहाँ पे लेके चले गए, और वहाँ पे जाके जब उसको ट्राई करवाया वो, और वो भाई साहब उसको पहनने के बाद उसके बटन बंद करने की कोशिश कर रहे थे और वो बटन उसके बंद ही नहीं हो रहे थे। ये सीन हुआ जी। उसके बाद फिर बड़ा वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो गया कि अब करें तो आखिर करें क्या, क्या किया जाए उसके ड्रेस को लेके। फिर हमें किसी सियाने आदमी ने मशवरा दिया कि इसकी जो है वो अंदर से क्लिप लगा के ना, वो जो हेयर पिन्स होती हैं वो हमने लगा के उसको बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया, और बस इस तरह का था बेचारा, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। तो आपने कुछ यूँ करना है जी, आपको अगर ड्रेस पसंद आए या ना आए, लेकिन आपने उसको ट्राई लाजमी कर लेना है ताकि आप उसके अंदर कंफर्टेबल रहें उस दिन, जो कि एक बड़ा खास दिन होता है। खास इस हवाले से होता है कि आप डेफिनेटली एक नई जिंदगी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है उसने भी आपको फर्स्ट टाइम भी देखना है। अगर आपकी अरेंज मैरिज है, अगर आपकी लव मैरिज है, तो फिर जाहिर है पहले भी देखा होगा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है भाई। आप स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं और आपके सामने ऑडियंस होती है, आपके सामने लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। और उन लोगों में खास तौर पे वो लोग होते हैं जी जिन लोगों ने आपके बारे में बातें भी करनी है, डिस्कशन करनी होती है। और फिर ये भी एक बड़ा मजे का सीन होता है कि शादी के बाद तारीफें भी की जाती हैं, तनकीद भी की जाती है, खाने के हवाले से, शक्ल के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, बालों के हवाले से, एक एक चीज़ नोट की जाती है। यकीन करें कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं इस तरह की चीज़ें नोट नहीं कर सकता, लेकिन देखने वाले जो हैं वो बड़ी बारीकी से, बड़ी ही बारीकी से नोट करते हैं चीज़ों को, और देखा जाता है, और फिर देखने के बाद डिस्कशन की जाती है कि भाई उसने ये पहना हुआ था, उसने ये पहना हुआ था। फिर उसके अलावा ये बारात की भी, चलें ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी अगर हम इसी के ऊपर लगे रहे। बहरहाल जी, बारात की जो इवेंट है, बारात का जो इवेंट है उसके अंदर भी कुछ रस्में होती हैं। इस दिन के अंदर बहुत सारी खास रस्में होती हैं, बहनें गाना बांधती हैं और दूल्हे के शोल्डर के ऊपर रिबन बांधा जाता है, फिर उसके बाद कुल्ला पहनाया जाता है। कुल्ला जो होता है वो घर के बड़े पहनाते हैं, बहनें गाना बांधती हैं, और जो दोस्त अहबाब होते हैं वो उसको पैसों वाले हार पहनाते हैं। और ये बड़ा मज़े का सीन होता है, अगर आपको मैं अपनी शादी पे बुलाऊं तो आप मुझे कौन सा हार पहनाएंगे, कौन से पैसों का, डॉलर का, पाउंड का, या फिर कौन सी करेंसी होगी? आप तुमन गाना पहना दीजिएगा, तुमन की करेंसी आपको मालूम है किस कंट्री की है? मुझे मालूम है किस कंट्री की है। बहरहाल जी, गाने और हार जो है ये पहनाए जाते हैं, फिर उसके बाद बारात को प्रॉपर निकाला जाता है। बारात को निकालने के बाद जो सीन स्टार्ट होता है, निकालने से पहले ढोल वाला ढोल की थाप के ऊपर जो है वो भंगड़े डलवाता है दोस्तों से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे आगे एक ब्रेक आ रही है, छोटी सी ब्रेक से पहले आपको मैं एक वगदी रावी दे विच मलकूदा गाना, बड़ा ज़बरदस्त है ये गाना, मैं सुनाता हूँ, और इस गाने के उस पार दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, और कमर्शियल ब्रेक को आपने सुनना है, सुनने के बाद उस कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारी दोबारा से बात होगी। हम बारात के ऊपर बात करेंगे, फिर वलीमा है, सबसे मेन जो इवेंट है वो वलीमे का ही होता है, और कहते हैं कि जी ये सुन्नत है कि आपने जब वलीमा जो है उसके अंदर आपको अगर कोई दावत दे तो ज़रूर जाइए, उसको स्किप ना करें, बेशक आप दूसरे इवेंट स्किप कर दें, लेकिन इसकी हम बात करेंगे आगे चल के। और आप ये मलकू का गाना सुने, गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM से मुझे, यानी राणा अर्सलान अली को लाइव।

बिल्कुल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली, आप सुन रहे हैं रेडियो 97.1 FM। बात हो रही थी बारात के हवाले से, और बारात की जो रस्म है उसके अंदर जो कुछ होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। हम पहुंचे थे जी गाने तक, कि गाना बांधा जाता है बहनों की तरफ से, और जो कुल्ला है वो पहनाया जाता है, जो घर के बड़े होते हैं, सरबरा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उनकी जानिब से ये एक रस्म अदा की जाती है कुल्ला पहनाने की। उसके बाद कुछ फोटोशूट होता है, जो कि मेरा काम है, मैं प्रोफेशनली जो है वो फोटोग्राफर भी हूँ, वीडियो मेकिंग का भी हमारा काम है। तो फोटोग्राफी होती है, कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर उसके बाद हार पहनाए जाते हैं जी शादी के ऊपर, जो दूल्हे के दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो उनकी जानिब से फिर कुछ रस्में जो हैं वो होने के बाद बारात को प्रॉपरली जब निकाला जाता है, तो फिर ढोल की थाप के ऊपर पूरे मोहल्ले को सुनाया जाता है कि जी इस घर से दुल्हा जा रहा है दुल्हन को लेने के लिए। फिर लोग आते हैं, वेलें करवाते हैं जी। वेल करवाना भी अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, कुछ लोग आते हैं फिर पैसे पकड़ के, फिर उसका सदका उतारने के लिए बेसिकली उसके सर से वार के जो है वो गरीबों को दिए जाते हैं, या फिर जो इकट्ठे करने के लिए लोग आए होते हैं वहाँ पर मौजूदा सिचुएशन के ऊपर जो लोग इकट्ठे होते हैं उनमें से ही कुछ लोग पैसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है जी, दोस्त जो है वो गाड़ियाँ निकालते हैं और गाड़ियों में बैठा जाता है दूल्हे को। हमारे यहाँ ये भी एक रस्म है कि जी पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को जब लेकर जाते हैं तो उनमें औरतों को जो है वो शामिल नहीं किया जाता, कुछ लोग औरतों को लेकर जाते हैं। बहरहाल जी ये कल्चर का हर किसी का अपना एक स्टाइल है और अपना ही एक तरीकाकार है। पर जी दो तीन जो है बहनें दूल्हे की या जो भी फैमिली के बहुत करीबी मेंबर होते हैं वो साथ जाते हैं, फीमेल्स जाती हैं जिन्होंने दुल्हन को बिठा के लेकर आना होता है, और फिर बारात जाई जाती है। बारात जाने के बाद जब हॉल में पहुंचा जाता है वहाँ पर एक वेलकम करना लड़की वालों की तरफ से, वो भी एक बड़ा जो है वो इमोशनली और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो किस्म का कनेक्शन जो है वहाँ पर बिल्ट होता है। सबसे पहले जो मुलाकात होती है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर के अंदर बूढ़ों की, बड़े जो होते हैं हमारी फैमिली के और जो अगले बंदे की फैमिली के जो बड़े होते हैं उनकी फिर मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद होता कुछ यूँ है

होता कुछ ना जी, वहां पर ड्रेस जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका जो है वो एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे के साथ, उसको मिलनी भी कहा जाता है पंजाबी के अंदर। अगर आप लोग भी, आपके कल्चर के अंदर भी ये चीज़ शामिल है, आप पंजाब के किस हिस्से से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, और आपके यहाँ भी मिलनी, जो मिलनी का कॉन्सेप्ट है वो है या नहीं है। फिर वहाँ पर एक मिलनी का कॉन्सेप्ट होता है, आपस में गैदरिंग होती है, मिला जाता है, और जब बड़े मिलते हैं फिर वो एक सूट का जो है एक्सचेंज करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपरली दूल्हे को अंदर एंटर किया जाता है। एंटर करने से पहले समटाइम ये होता है जी, हमारे ये भी कल्चर है, अब तो आके चुके, जब हॉल्स के अंदर शादियां होना स्टार्ट हो गई हैं तो दूल्हे को रोका नहीं जाता, नहीं तो पहले दूल्हे को रोकने का भी एक जो है वो था, इवेंट हो जाता था, रस्म कहेंगे बल्कि उसको, इवेंट तो नहीं, रस्म होती थी, दूल्हे को रोकने की रास्ता रोका जाता था लड़कियों की जानिब से, सालियों की जानिब से। फिर उसके बाद रास्ता रोकने के बाद कुछ पैसों की डिमांड की जाती थी, और फिर वो पैसे देने के बाद रास्ता जो है वो ओपन होता था। ऐसे अगर आप हमारे किसी दोस्त की या हमारी साली हो तो आप जो है वो कितनी पैसों की डिमांड करेंगी रास्ता रोकने के हवाले से, ज्यादा ना मांग लेना आगे जाके, क्योंकि ये होता है कि जी फिर ये एक रस्म ये होती है, फिर उसके बाद जब अंदर एंटर हुआ जाता है, फिर उसके बाद निकाह होना और जो भी रस्में हैं वो कंप्लीट होने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, जब दुल्हा जो है वो दुल्हन वाली साइड पे जाता है तो वहां पे एक और रस्म होती है जूता छुपाई की, कहीं पर ये वलीमे वाले दिन अदा की जाती है और कहीं पर ये रस्म जो है वो बारात वाले दिन ही निभाई जाती है, और जूता छुपाया जाता है, और जूता छुपाने की रस्म भी बड़ी मजे की होती है, वहां पर भी पैसों की डिमांड की जाती है। अगर आपको जूता छुपाने का मौका मिले तो आप कितनी डिमांड करेंगे, 5,000 10,000 कितनी डिमांड होगी आपकी, अपना मुंह जरा वो बताइएगा कि आपका किस काबिल है आप लोग, क्या आप डिमांड करेंगे पैसों के हवाले से, कि कितने पैसों की डिमांड होनी चाहिए। ऐसे ही होना ये चाहिए कि जो दुल्हा जो है वो जितना अमीर हो उस हवाले से ही डिमांड की जाइए, की जानी चाहिए, यानी कि कहते हैं ना कि अगले दिन मुंह नू देख के चंड मारनी चाहिए, या फिर अपना जो है वो भी सिस्टम देखना चाहिए कि भाई हमारी जो लड़की है वो उसके हवाले से रिश्ता खराब ना हो, क्योंकि ये जो रस्में होती हैं इन रस्मों को लेके बहुत सारे रिश्ते भी खराब होते हुए मैंने अपनी आंखों के साथ देखे हैं। और अगर आप लोगों के यहाँ कोई करीब करीब कोई इस तरह का हैपन हुआ हो तो आप बता सकते हैं। बहरहाल जी, बारात का जो ये सारा सीन है, इसके बाद एक रुखसती का जो है बड़ा इमोशनल सा एक टच आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हल्का हल्का सुरूर है राहत फ़तेह अली खान के जो उस्ताद मोहतरम है नुसरत फ़तेह अली खान, उनकी तरफ से ये गाना हम सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद फिर हम दोबारा लौटेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM।

ले जी, अभी आप सुन रहे थे रेडियो फजा लाइव से, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कुसूर है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में।

0: और हम लोग भी जो है वो अपनी रुखसती, अपनी मतलब के जो हम डिस्कस कर रहे थे शादी, उसकी रुखसती पर पहुंच चुके थे, जो कि इमोशनल जो है वो सीन जो है वो बन जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम स्टार्ट में चुके हल्ला गुल्ला वाला म्यूजिक लगाया हुआ था, तो एक रिदम, एक फ्लो बनाते हैं, और साथ ही हमने ये हल्का हल्का सुरूर जो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में लगा लिया, ताकि जो फ्लो है हमारा वो बरकरार रहे और एकदम से हमने जो यू टर्न लिया है वो भी स्टेबल रहे, क्योंकि अब जो है स्टोरी इमोशनल स्टार्ट होने वाली है और रुखसती का जो है वो टाइम आ चुका है और सारे जो है वो लोग एकदम इमोशनल हो जाएंगे। ये नेचुरली इस तरह होता है कि जी रुखसती किसी की भी हो, तो जो बेटियों वाले होते हैं उनको भी अपनी बेटियों का ख्याल आ जाता है, और फिर जाहिर है एक वो सीन क्रिएट होता है, एक इंसान के अंदर अपनी एक रील चलना शुरू हो जाती है कि उसको याद आ जाता है कि उसकी जो बहनें हैं, जो उसकी बेटियाँ हैं, या फिर जो भी उसका कोई रिलेटिव, कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन है, या फिर उसकी कोई महबूबा है, एक ना एक दिन उसकी भी रुखसती हो जाएगी। तो ये जो सारा सीन क्रिएट होता है उसके अंदर इमोशंस जो होते हैं वो इंसान के अंदर से बाहर आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग, बहुत सारे ऐसे शख्स जिनकी अपनी एक रूपदार पर्सनैलिटी है, उनको भी यकीन कीजिए कि रुखसती के ऊपर रोते हुए देखा है, क्योंकि इस तरह का इमोशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, खास तौर पे अरेंज मैरिज के अंदर। और जहाँ पर लव मैरिज होती है डेफिनेटली वो तो लड़की जो है वो थोड़ी सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा इमोशनल स्टोरी क्रिएट नहीं होती। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि भाई मोहब्बत को पाते हुए भी रोते हो साहब, क्या करते हो, कमाल करते हो। तो इसलिए जब अरेंज मैरिज होती है तो डेफिनेटली वो एक इमोशनल सीन क्रिएट होता है, और फिर लड़की जब एक अननोन शख्स के साथ जा रही होती है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, आगाज़ करने वाला जो एक सिचुएशन होती है, एक वो जो ज़िंदगी के अंदर एक टर्न आता है, तो जाहिर है एक इस तरह का जो है वो रिश्ता, अपने रिश्तों को छोड़ना, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, तो एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट होने के बाद, खैर रुखसती जब हो जाती है, और फिर रुखसती होने के बाद घर के अंदर आते हैं शाम को, कोई हल्ला गुला नहीं होता इतना ज़्यादा लड़की वालों के घर, लेकिन लड़के वालों के घर में एक नई रस्म स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उनको एंट्री पे मुंह मीठा करवाया जाता है, फिर उसके बाद उनका जो है वो तेल का एक साइड पे तेल को फेंकना, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी एक बड़ी मज़ेदार रस्म है। फिर उसके बाद सदका दिया जाता है वार के, वो जो एक जानवर का सदका देते हैं, फिर उसके बाद कुछ पैसों का सदका गरीबों को देना, ये सारे जो सीन है वो बड़े मज़े के और बड़े इमोशनल होते हैं। फिर फैमिली बैठती है, फिर बैठ के सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया जाता है कि आज कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। फिर उसके बाद वलीमा जो होता है, वलीमे का एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सारे इकट्ठे होते हैं, और फिर वलीमे का जो अब सीन रह गया है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट शो के अंदर। मुझे सामने नज़र आ रहा है हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और हमारा अभी जाने का वक्त है। वापिस आएंगे, दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के अंदर, एक नई टॉपिक के साथ, और एक नए सफर का आगाज़ करेंगे। तो जाते जाते आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं, और एक खूबसूरत सा ट्रैक जो है वो आपका और मेरा प्यार अमर रहे हमेशा। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अपना और मेरा ख्याल रखिएगा, आप मेरा भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 0757729926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, We specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।

0: ओरिजिनल वंस अगेन वेलकम बैक लुटकरा चुके हैं वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं और हम भी आपके साथ साथ हैं। बंदे ने चीज को कहते हैं उस्मान खान विद काशिफ आकाश। आज हमने इनको एक नया नाम दे दिया है और इससे पहले ये अपने नाम के साथ अपने वालिद मोहतरम का शायद नाम लगाते थे,
1: नहीं समीर लगाते थे,
0: समीर लगाते थे, काशिफ समीर। आज हमने इनको काशिफ आकाश बना दिया है। वेल वंस अगेन वेलकम बैक काशिफ। आपको भी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होंगे?
1: नहीं जी, ठीक ठाक है।
0: ठीक ठाक है तो इतने दुख भरे अंदाज से क्यों कह रहे ठीक ठाक है?
1: दुख भरे अंदाज से नहीं कह रहे, वैसे जो है ना सम टाइम बंदे का जो वो कुछ चीजों को लेके बंदा उधर माइंड सेट बिजी होता है तो सम टाइम लगता है कि आवाज में जो परेशानी है,
0: मतलब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है?
1: हाँ जी बिल्कुल ऐसे।
0: जी हाँ जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ आकाश, काशिफ शमीर कह लीजिए, काशिफ आकाश कह लीजिए, भले ही कुछ ना कहिए आपकी मर्जी है। और मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप सुन रहे हैं 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव जोन, जिसमें हम और आपका साथ अभी काफ़ी वक्त का पड़ा है और हम दोनों के सामने एक अदद और खूबसूरत सी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी तारीफ या तारुफ दोनों ही नहीं है,
1: फिर भी कोशिश करते हैं कि इनको तारीफ और तारुफ दोनों में लेके आए।
0: ये वो चंद दिन के मेहमान थे हमारे साथ जो मेरा ख्याल है कोई हार्डली 4-5-6 प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहे, कुछ अकेले प्रोग्राम्स भी ना किए, उसके बाद इन्हें याद आए थे काम ही नहीं ठीक। बड़ा मुश्किल होता है बंदा सामने बैठा और बोलने की इजाज़त ना हो तो।
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: बर्दाश्त करो मेरे दोस्त, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त में बहुत फ़ायदा होता है। आपको पता है काशिफ साहब, मौज़ूम को किसी ने कहा था कि बादाम खाया करो दिमाग तेज़ होता है, ये इसको ना भूलने की आदत थी और ये बेचारा पिछले एक माह से ये भूल गया इसने बादाम कहाँ रखे थे।
1: हाँ जब वो मिल जाएंगे तो माइंड बहुत तेज़ हो जाएगा।
0: वैसे किसी हद तक ये बात सच भी है जनाब के धोखे खाने से दिमाग तेज़ होता है और कुछ लोग कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, दोनों में से अगर काशिफ की राय लीजिए, काशिफ धोखा खाने से दिमाग तेज़ होता है या बादाम खाने से?
1: जब आप रियलिटी फेस करते हैं तो तब जो है ना माइंड का वो पोर्शन भी ओपन होता है, वो चीज़ें आपको समझ आती हैं जो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। बादाम तो ये है कि वो आपको डाइट में जो और एक मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आपने कहना जो माइंड बेहतर हो रहा है, हालांकि धोखे में ज्यादा फायदा है,
0: धोखे में
1: वो खाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ट्रस्ट करना पड़ता है।
0: ऑफ कोर्स दैट वो सियाने ये भी कहा करते हैं कि धोखे को ना अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है, ये जिस जगह से दिया जाता है एक दिन घूम फिर के वहीं पर जरूर लौट कर वापस आता है।
1: बिल्कुल ऐसी है,
0: मिसाल जिंदा हमारे सामने
1: ऐसी।
0: आगे जनाब गपशप जारी सारी रहेगी और इसके साथ साथ आपके लिए खूबसूरत सी प्लेलिस्ट भी हमारे पास मौजूद है जिसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल के लिए नंबर है 01157100971। इस नंबर को आपने डायरेक्टली इस पे कॉल नहीं करनी मेरे प्रोग्राम में, बल्कि आपने इसको सेव करना है और फिर व्हाट्सएप पर जाकर मुझे व्हाट्सएप से कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप पे कहना कॉल की आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर अगर कॉल नहीं कर सकते तो आप काशिफ से मैसेज पर भी बात कर सकते हैं, काशिफ आपका मैसेज पढ़ेंगे, तमाम सुनती समातों को सुनाएंगे और जवाब भी देंगे, देंगे ना जवाब?
1: जी बिल्कुल जवाब देंगे और जो आप किसी को सॉन्ग या कोई चीज़ डेडिकेट करना चाहते हैं तो उसको भी मेंशन करेंगे।
0: ऑफ कोर्स डैड जी, आपका कोई पसंदीदा पर्सनैलिटी अगर आपके सामने मौजूद नहीं है तो आप उसके नाम कोई कोई भी खूबसूरत सा सॉन्ग डेडिकेट करवा सकते हैं।
1: किसी को आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं लेकिन काफ़ी अरसे से वो दे नहीं पा रहे क्योंकि वो कोई हेजिटेशन आ रही है, तो हम आपका वो जरिया बनेंगे और एग्जैक्ट उस बंदे को जो आपका जो जो पैगाम है उसको पहुँचाएंगे।
0: ये अक्सर पैगाम अटक जाता होता है कोई इसमें
1: रिच आ जाती है ऐसे।
0: खैर जनाब, इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई भी पसंदीदा गज़ल नज़्म चंद अशआर कोई कोटेशन कोई बात कोई सलाम कोई दुआ कुछ भी लेकर भेज सकते हैं 01157100971 पर। और आपको लगता है कि आपके चाहने वालों तक रेडियो फजा की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, नॉटिंघम के आसपास कहीं दूर रहते हैं वो, सो यू कीजिएगा कि उन्हें कहिएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें सुन रहे radiofaza.co.uk पर, नहीं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फजा डैप पर भी हमें ट्यून कर सकते हैं। काशिफ की फरमाइश पर शामिल कह रहे हैं खूबसूरत सा पंजाबी ट्रैक, इस ट्रैक उस पर होगी आपसे मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ। मुझे कहते हैं उस्मान खान,
1: मैं हूँ आपका आरजे काशिफ समीर।

0: और हमारे साथ मौजूद है काशिफ समीर और समीर राइट काशिफ
1: यस काशिफ समीर
0: आज आहिश अभी भी रखा था अभी भी भूल गया
1: आस्ता आस्ता जो है ना वो यूज थ्रू हो जाएंगे और उसको लेके चलेंगे
0: चले जरूर आहिस्ता आहिस्ता इस मंजिल मकसूद पर भी हम एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे और यार तो वो दरी वेहल है जी हाँ जनाब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मौज़म अली भी और मौज़म जो है वो स्टिल मसरूफ है अपने किसी ऐसे काम में जो वो हमें बताना भी नहीं चाहते पैसा चीज ही ऐसी है काशिफ साहब क्या
1: जी बिल्कुल ऐसी इसमें बड़ी अट्रैक्शन है रातों की नींद उड़ा देता है और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब आप जाना चाहते हैं लेकिन उधर जा नहीं सकते
0: अच्छा वैसे काशिफ मुझे बताएं आपकी जिंदगी में पैसे की क्या वैल्यू है
1: समटाइम ये सांसों से भी ज़्यादा कीमती होता है और समटाइम लगता है बंदे को कि जब बंदा बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागता है और बहुत सारे इसके रिश्ते और जो है ना इसके बहुत सारे दोस्त और ऐसी चीज़ें मिस कर रहा होता है बंदा कि क्या एक वक्त आता है कि बंदे को फील होता है कि यार नहीं पैसे का भी थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए और मुझे दूसरी चीज़ें भी साथ लेके चलनी चाहिए
0: मैं आज ही एक ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक रील आई उसमें मैं एक बंदा था और वो ना कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था नीचे देख के ना थैंक यू कह रहा था थैंक यू जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी बदल गई अब वो देखने में यही फील हो रहा था शायद वो किसी खातून से या अपने किसी दोस्त से मुहातिब है लेकिन जब कैमरा नीचे किया गया तो उसके हाथ में पैसे थे और फिर जब उसका फ्लैशबैक चला तो दिखाया गया कि वो बंदा जो है जब गली से गुजरता था तो कोई उसे सलाम नहीं करता था गुड मॉर्निंग नहीं कहता था इवन देन उसकी अपनी मिसेज जो है वो उसके छोटी छोटी चीज़ों पर उसे ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम करते ही क्या हो तुम्हारे पास है ही क्या मैं तो फंस गई तुमसे शादी करके ब्ला ब्ला ब्ला और फिर वो जब वापस आया तो दिखाया गया कि जब से पैसा मिला है तब से हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है इवन देन उसकी मिसेज भी उसकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे हम ये कह सकते हैं कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जहाँ पर पैसा ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर फिर वो जो रिश्ते आपके बनते हैं आई डोंट थिंक सो कि वो रिश्ते जो हैं वो आपके साथ मुखलिस होते हैं फिर वो सिर्फ पैसे की वजह से महज आपके साथ रहते हैं
1: मसला ये है कि रिश्तों का भी कसूर नहीं है लेकिन ना इस इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए
0: रिक्वायरमेंट
1: पैसा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं बहुत सारी और भी क्रिएचर्स हैं लेकिन उनको अर्न नहीं करना पड़ता उनको जॉब पे नहीं जाना पड़ता तो रिश्तों की भी डिमांड होती है और हमने जब इसको लेके चलना है तो फिर

0: पैसा जरूरी है।
1: तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जिंदगी के हर हिस्से में पैसा होना जरूरी है।
0: हाँ, अभी जो अभी करंट सिनेरियो अराउंड द ग्लोब चल रहा है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमने इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, कि फैमिली को, अपने सर्कल को और अपनी खुशी को कैसे लेके चलना है, और जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो बैलेंस कैसे लेके आना है।
1: अच्छा, व्हाट यू थिंक अबाउट पैसे की वैल्यू का अंदाजा हमें एज के किस मोमेंट पे जाके होता है?
0: पैसे की वैल्यू का अंदाजा ऐसे भी होता है कि जब आप कॉल किसी को करने लगे तो आपके पास बैलेंस नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है।
1: एज, एज मैं पूछना चाह रहा हूं।
0: डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज कि आप लेट एज में आपको मेडिसिन और इस तरह की मेडिकल इश्यूज हैं तो उधर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अर्ली एज में आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने फीस और इस तरह के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको कवर करने के लिए। तो सम टाइम कुछ लोग जो है वो हो जाते हैं ऑर्फन हो जाते हैं, तो उनको डे फर्स्ट ये चीजें जो है ना डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस सिनेरियो से गुजर रही है। तो ऑल द टाइम जो इंसानी लाइफ है इसमें पैसे का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता
1: रहता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि पैसे की वैल्यू का अंदाजा हमें
0: सिचुएशन के अकॉर्डिंगली,
1: सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा आपसे मुख्तलिफ है मेरा ख्याल।
0: जी बिल्कुल, अपना
1: हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, और मेरे ओपिनियन के मुताबिक यही है कि पैसे की वैल्यू आपको डे फर्स्ट से पता चल जाती है,
0: पैदा होने से पहले।
1: पैदा होने से पहले देखें, देख आपके पास पैसा नहीं होगा पैदा कैसे होंगे,
0: हॉस्पिटल के एक्सपेंस वगैरह वो आपको पे करना
1: है। ये तमाम तरह चीजें, और ये आप मौजूद की तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं?
0: क्योंकि उनको भी अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी वो हमारा साथ दे सकते थे, माइक उनका मौजूद है, लेकिन वो समथिंग डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: मौजूद कहाँ लेकर जाएंगे आप इतना पैसा, मुझे तो समझ नहीं आती भाई इतना पैसा। मौजूद वो बंदा है जिसके पास इतना पैसा होता है, दिन में इतना पैसा होता है, अनफॉर्चुनेटली रात को जिसका होता है वो इसे वापिस ले लेते हैं क्योंकि मौसम बैंकर है, तो ऑफकोर्स डैट इस बंदे के पास बहुत पैसा होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका अपना नहीं होता।
0: ये इसकी ये सिचुएशन है कि ये समुद्र में और हर तरफ पानी है, लेकिन ये शाम को प्यासा ही घर जाते हैं
1: महीने के बाद इसे थोड़ा सा पानी दे देते,
0: जो खारा पानी है बेसिकली ना।
1: खैर जनाब, प्रोग्राम में इस तरह की गपशप का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपका मूड थोड़ा सा अपसेट हो तो शायद ये तमाम तर मेरा ख्याल है ऐवी सी बातें जिनको हम फजूल तो हम नहीं इसको कहेंगे, इस पर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी बातें जो आपके मूड को काफ़ी हद तक फ्रेश कर सकती हैं। लेकिन इन बातों के दौरान आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हैं, आप चाहें तो मौसम के एक हाथ जुगत लगा सकते हैं। मौसम की तरफ से खुली इजाज़त है ना मौसम? सब आपको नहीं है
0: जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: आजकल ना सिचुएशन ये चल रही है, तमाम तर लिसनर्स को बता दूं कि काशिफ जो हैं वो मौजम की काउंसलिंग कर रहे हैं, मौजम अपनी मर्जी से काउंसलिंग ले रहे हैं। अब वो किस अबाउट है वो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन वो नहीं नहीं, नहीं, नहीं कर रहा है इसलिए नहीं बताऊंगा।
0: वो थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है, तो जब ये हो जाए
1: थोड़ा सा
0: फिर पब्लिकली जो है ना वो आपके साथ
1: अनाउंस किया जाएगा, पब्लिकली पब्लिकली
0: शेयर किया जाएगा।
1: सर हम, मैं कहता हूँ
0: प्रॉपर सेलिब्रेशन होगी।

0: खैर जनाब, आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा, गपशप इसी तरह रहेगी और हल्का फुल्का चिटचैट भी चलती रहेगी, लेकिन इस ट्रैक के उस पास डोंट कैन भी रहेगा हमारे साथ साथ हमारे साथ काशिफ
1: आरजे काशिफ समीर
0: आरजे फर्स्ट वन है आरजे काशिफ समीर जमीर
1: समीर
0: समीर ओके
1: सॉफ्टनेस है ना इस
0: सॉफ्टनेस ऑलराइट आरजे काशिफ समीर हमारे आपके साथ हैं और उस्मान खान भी आपके साथ साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे ये आपको आगे चल के बताएंगे, फिलहाल आप इस खूबसूरत से म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: फजान 97.1 FM।
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: It's commercial time.
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए, कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: करूं लौंडे।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
3: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
2: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
2: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: टर्न इट अप, रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: are listening to 97.1 FM Radio Fazza.
1: Radio Fazza.
2: Emergency लगी थी, सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था, स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में बंद किए गए थे। जब एक साल बीत गया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: दोस्तों को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

0: suco, suco!
1: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: सुनते रहिए Radio Fazaa 97.1 FM.
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.